0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा यही चाहते हैं, आप थोड़े समय में के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकती है कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, बनेगी।

Paulo. Torresão. Helena que Paulo. Essa rua, né?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक स्वयं का स्वमान, दूसरा समय का। मैं तो आप साधारण नहीं हो, पूर्वजों
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की, विल पावर। तो परमात्मा विल पावर के आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच के बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों कैसा ऐसा तो नहीं, इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों, क्या ऐसा वैसा, ये पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वो बात अलग है। लेकिन जब सामने जाते तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। आकर तो सभी कुछ को नहीं, अभी सेवा में सकाश दे को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोगों को पता है, पहले पहले जब बच्चे सेवा में गई तो ब्रह्मा कुमारियों को सफेद साड़ियां देख करके वो दरवाजा बंद कर देते थे, दूर से ही दरवाजा बंद कर देते थे। सफेद साड़ी ग्रस्तों को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए बच्चों ने सेवा कैसे शुरू की, उनके पोस्ट बॉक्स में डाला थी, क्योंकि पोस्ट तो निकालेंगे तो पोस्ट में कईयों को संदेश मिल जाता था। पहले पहले सर्विस जब आरंभ हुई है तो बहुत मेहनत से शुरू हुई।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साथ साथ

matraca.

Karneki.

hijo.

Stagione mit der Hand.

adaptation.

し。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: अपने चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Red Butcher. Rodney.

change me.
आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सत्तर वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन और आलस और बहानेबाजी खेल देख लिया। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल खूब देख के बचोगे। जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस

चक्रम देखने चाहते, कभी भी देखो क्रोध आता है, अपमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताती है? एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई देती है, कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते, ये तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात तो रही है, ये होता ही है, ये क्या है, अलबेलापन नहीं है।

मैंने किया रंग वो नहीं कहेंगे, ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज, ये ना करे तो नहीं होगा। और बाप ने कहा वो नहीं होगा, वो करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते। आजकल क्रोध का बच्चा रोप रोप भी भिन्न भिन्न प्रकार के है। तो क्या आज चार का भी व्रत लेंगे जैसे पहले? संकल्प मेजॉरिटी ने किया, क्या ऐसे ही चार का संकल्प ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहते हैं वो याद नहीं, उसने जो किया वो याद आ गया, ये बहानेबाजी हुई ना। तो

0: के बच्चे के करते हैं तो आपके बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हाथ बाप दादा नहीं उठाते क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, बाहर जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन बाहर को रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि दृढ़ता की कमी हो जाती हो जाएगा। चलता है चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने नोट की है बातें, अपने हिम्मत नहीं चलती ना तो कहते हैं महारथी भी ऐसे ही करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? उस समय वो महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना सहज होता है। अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब लेने आए हैं, लेकिन हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुमारियां क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में सत में मिटने। नौकरी नौकरी करनी भी पड़ती है, तो भी बाप दादा कहते हैं अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है। कुमारियों को तो भी

0: वहां सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, तो थोड़ा हिसाब किताब पूरा करके अगर आवश्यक हिसाब है चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, कईयों के सरकमटेंस है लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई, प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, भोली वाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया अर्थात स्वउन्नति में हर समय कदम उठाती रहे। सिर्फ नौकरी नहीं, स्वउन्नति में अपने सरकमटेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किटकिट वाले नहीं बनना, योग्य टीचर, क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेते लेकिन सेंटर पर जाती है कोई प्रॉब्लम हो जाती, वो हैंड्स तो नहीं बन सकेंगे ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी, अपने को एडजस्ट करने वाले, एडजस्ट करने वाली हो ना कि अगेंस्ट होने वाली है। अगेंस्ट नहीं हो किसी के प्रति भी, एडजस्ट होने वाली। अच्छा तो ऐसी कुमारियां बनेंगी, हाँ तो रहो सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाले। निर्विघ्न तो बहुत हैंस बन सकते हैं, अभी हैंस के कमी है। बाप दादा सभी को कह रहे हैं, कुमारियों को, मददगार बनेगी ना, हाथ उठाओ जो मददगार बनेगी। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ, निर्विघ्न मददगार, निर्विघ्न। फिर इन एडवांस मुबारक को, मुबारक को, मुबारक।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Liberty, Liberty. Lekin Smirti Swarup. Albao.

见呢、啊、就说如果是没地方的我是说如果

इसकी और आवश्यकता क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं किसी इस स्वरूप की अनुभूति में खोजे अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत

0: Ein Boss, warum? Key is the day. Sada. उसकी शिकिल चलन सेवा करती,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये राइट लो पाता कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप से मदद करो, धन से मन से धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं। बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, पानी का ग्लास भी नहीं मिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम बिजी रहे, ये भी होते हैं कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना क्या है? करना या ना करना की बात है, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। इसे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब से होगा करे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रायल रूप है, और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया, जहां एक विकार होता है ना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखाए। सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त बाप होने की टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल अचानक और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही। और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया, अलबेलाया छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे जो जाते हैं तो विश्व परिवर्तन

0: Yeshua ko banane wale ho baap dada to chota sa kaam de rahe sankalp karte ho haath uthao sankalp karne wale कुछ करती है मुबारक हो मुबारक हो मुबारक अभी दूसरे वाली आए तो कुछ खबरी सुन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे बारह है, लेकिन तो काफी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

0: जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी ब्राह्मण एक दो में अपनापन अनुभव कर, दादी को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना, हर एक यही सोचो सब अपने अपनापन महसूस, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया, तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते। ये दिल के वाइब्रेशन अपना पन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को ये जो परिवार की बात है, उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती, देखनी पड़ती। एकदम बड़ी दिल लो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार एक एक मत हो के चलना है, चलाना है, सिर्फ चलना नहीं चलाना भी। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलते, चलाना है। जैसे बाप दादा ने अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने चलते हो, चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50 इतने होते नहीं है, लेकिन मानो बड़े स्थान है उसमें भी 50-60, अच्छा 100 भी समझो ज्यादा में ज्यादा। इतने नहीं है लेकिन समझ लो। तो बाप दादा तो सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया था, और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता, मीठे मीठे जानता है खट्टे भी है। लेकिन मीठे खट्टे कभी याद में कहा है, उन्हों को भी लाडले कहते हैं। नसरब कहते हैं लेकिन मेरा बच्चा मेरे भाव से चलाते हैं, क्योंकि बता दिया कि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा, राज किस पर करेंगे। अच्छी प्रजा भी तो चाहिए ना, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करे, परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या, अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं तो खराब का हो गया, जो अच्छे को भी बदल लेता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सब का चीख किया तो टोटल 50% बच्चे दूसरों

Chichi, Bajemi, Allah Billy Man me bota de ye to hota hi hai, ye to chalta hi hai, jaldi to sab chalte hai, baat ta ko hansi aati hai. क्या अगर एक ने ठोकर खाई तो उसको देखकर आप अलग पहले मन में आके ठोकर खाते हो समझदारी बहुत बहुत बहुत अल्लाह पहले मन का पश्चाताप अभी बड़ी बात नहीं लगती है. हाँ चलो लेकिन बाप दादा सब देख रहे हैं. कितनी अलग बेटी होती है, कितने जाने में वालों करते हैं तो इंसान बाप दादा को बहुत रहम आता है. के पश्चाताप की कड़ियां कितनी कठिन हो, इसलिए अल्लाह पहले बन की लहर को दूसरों को देखने की लहर को इस सब पुराने वर्ष में मन से विदय दो. Thank you.

cepat sihat. Joe.

agar समझ लिया, सोच लिया तुम बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट बन चुके हैं तो फिर तुम पढ़ाई बने, फिर तो समाप्त कर दे। लेकिन इस

0: mampan kutip. Agar kui dukan katanya. Tuh marti kagame dukan si bajana. Nak kutvalu.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते हैं। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी। ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं, जितना आगे जाएंगे उतने सूखम बातें आएंगी, क्योंकि पास विदा न रोना है ना, घबराओ नहीं। बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो, तो देखो बाहर भी रोई बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है? है नशा, अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं। अभी रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Up.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Peace.

Shut up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, हाँ, बदल के दिखाना, बदला नहीं लेना है बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो, नए नए रूप, रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप अपना ध्यान अंडरलाइन कर, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है और भी रायल रूप में आने वाली है। डरो मत, क्यों देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, तो माया की भी अंत तो होनी है। लेकिन जितना अंत आ रहा है समीप, उतना नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पांव में झुके, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना बिट नहीं जाए। कभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को पाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तित नहीं कर सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: See?

Sí.

सिस्टम में।

Sim.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शिवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, वो स्वार्थ है। ऊपर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ एकदम न्यारी और प्यारी बनकर स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारी चारों और
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

मन आंगन में प्रेम की किरणें पल पल होता अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा सा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

下夜，他不是没办法回家一半次给都阿比谁Esse é só...

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक जब करना ही है, होना ही।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं और कुमारों के बिना से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार देखा। तो आज बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार, तो प्यार वाले का मेहनत देखी नहीं जाती, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है, इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थ ये लेकिन स्वरूप नहीं बने एक सेकंड में, जारी सब्जेक्ट में अपने स्वमान की अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। जो देवमान नजदीक आ नहीं सके, जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता, नेचुरल जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है। सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गया हुआ, अनुभव को हजारे लोग बदलने चाहे बदल नहीं सकते। जैसे आप सब सारे लोग आपको बदलने चाहे बदल सकते हो, तो जो भी सब्जेक्ट है चाहे ज्ञान की चाहे योग की चाहे धारणा की चाहे सेवा की, किसी में भी चार में से

सुनते रहिए शिवा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा चक्कर सब

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: श्रेष्ठ रंग है

योगा की

साथ रहने से आपको कंबाइंड

इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो इस धूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते, वो भी डबल होली।

Você, Nyadi, Parmatma ki pyari, Tu nasha rehte hai na.

ti, por favor. Puchillate.

0: मुझे नहीं जानते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नहीं मानती वो क्यों, जब

0: मकान और पाप के प्रॉपर्टी का अधिकार संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाते। ये कभी शब्द अपने ब्रह्मांड डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर आप कहते हो ना कि बाबा तो आप हाजिर हो जाते है। अनुभव हाथ उठाओ, अनुभव है। अभी देखो हाथ तो उठा रहे हो। पाप हाजिर हो जाता, हसूर हाजिर हो जाता, तो ये शक्ति क्या है?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रत भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वमान के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं। दाल रोटी, संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन, किटराक से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले है, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं ले सकते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संगतोष में बहुत है, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संकटोष में नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संकटोष में आ जाते हैं टेम्पटेशन है, संकटोष में नहीं हो। पड़ता है कि कहता है आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते, तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को, पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ते।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

joke.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Mama.

Parti'si.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

awesome.

0: Attention, Sam. Reggae.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो बच्चा हसूर के हर्षरी मत हासर हसूर कर चलता है, हर कदम में जी हाजिर।

0: Красный. Дорщик тебе. Харсаме. Хасур.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी संकल्प चलती है, तो कितना भी योग पावरफुल चाहती है होता है क्यों? सर

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा आपका साथी है, जहाँ भी मुश्किल आवे बस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। बाबा भी बंदा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बाप दादा यही हर बच्चे से चाहता है,

जब मेरे को तेरी

Hippie.

कि हर एक बच्चा

suerte.

amigos.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना। गेट बंद, गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, ये तो अलमेटी ताले लगा देना, कार्ट्रिज का नहीं काट का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दादी कहती थी मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरुषार्थ करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। क्या चाहती हूँ? एक मधुबन वासी पाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वाले को दादी से प्यार था, ये दादी कहती थी, मुझे पता है। तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, पापा ने कहा, मम्मा ने किया, ये तो मधुबन वाले जानते। ऐसे ही अमृत वेले से लेके रात तक हर एक मधुबन वाले अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लाई। तो हमसे अगर दादियों से प्यार है तो यही करके दिखाए, सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल कर्म नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। ये हमारा संदेश खास मधुबन वालों को।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे 2000 तो सोचा था, वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएंगी, अलबेला बनाएंगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में, चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो, जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय के परिवार पर रहम

0: esa panza para hacer.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे Yeah.

जवाब आप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होते है ना, तो वहां खड़े हो जाओ। ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप की है, परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर आपके साथ आके बैठ जाओ। जैसे थक जाती है ना, तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाती है ना, तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच सृष्टि चक्कर को देखो। सृष्टि चक्कर में टॉप स्थान कौन सा है? संगम, बारा की सुई टॉप पर दिखाते हो ना। सेवा की फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। समझा क्या कर रहे?

0: Osman, ऐसे ऐसे प्लान बताओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Eso.

स्वमान कितना बड़ा है, चले गए अनादि स्वरूप में।

सादगी का रंग विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही। देख रहे हो जैसे सितारा विशेष चमकता है।

Sir.

अपना स्वरूप देखो।

ne sundar.

अपने

Rough.

Ci sono un scontro di greo.

transformando.

चक्कर लगा रहे हो, पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो, हाथ उठाओ जल्द। देखो अपना स्वमान, क्यों स्वराजन।

जीवन में स्वयं मालिक

से प्राप्त

अब चेक करो। पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार, पवित्रता से

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसी

ऐसे बाप दादा ने देखा है, कि कई बच्चे लक्ष्य अपने

ASMR.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है। तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता? मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा उसे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे। चेहरा अच्छा।

0: हंसो नहीं, मुस्कुराओ, जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराना। क्योंकि बाप दादा को भी दीवार पर शरद चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रही है या कोई भी

resquiatarse. Así. See.

बच्चों का लक्ष्य और लक्षण देख

Shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साइज़ का

神这一这是我的 exercise 学的给阿姆学给我不来个路我是给妈妈那一खुश रखेंगे वो मगुत सामे रखेंगे और दिक्कला का अनुभव करें तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो परम धाम से देवता बीच में

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Yogi.

Kill her now. Come by.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
4: जी।

Ora.

خوشی.

0: उसके लिए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम

0: Avke to dil mein shubha baithe, dilaram hai har ek ke dil ka dilaram, aur yehi dil ke dilaram se sada amrit और मुबारक देते रहना। ये तो लोगों को सेवा के अर्थ जहां तहां झंडा लहराती है तो उनके दिल में भी स्मृति आवे, मेरा बाप कौन पहचान। सभी को पदम पदम पदम गुना मुबारक है, मुबारक है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sorry.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी पाप दादा भी देखेंगे, एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, सिर्फ परसेंटेज लिखे, बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले को, लेकिन बैलेंस, स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है, सब रिजल्ट लिखेंगे। सिर्फ परसेंटेज लिखना, मीठी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज, क्यों टाइम नहीं होता है पढ़ने का।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ट्यूशन से बेशक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाए। विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना, दिल से कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल की

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं माया, अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है,
2: यूथ
1: और एजुकेशन,
2: एजुकेशन चलो
1: सभी का भी छप रहा है कहते हैं, जिला जिला
2: छपना चाहिए, क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़ता है, कई समझते हैं कि कर्म करते हुए ड्यूटी संभालते हुए कुछ हो नहीं सकता है, तो वो लोग उमंग उत्साह में, तो जब ये बने हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो ऐसा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल दुनिया वाले 200 मगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है। लेकिन बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता। ऐसे समझे के हम बहुत अच्छे जाते, हम कुछ चलने की चतुराई आ गई, लेकिन से नहीं चलो, एक तो को देख करके भीखा भी करती है, ये ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते है ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए। रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। पाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे, चाहे पीछे दिखाई भी के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है। भाषण करने वाले लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने के लिस्ट में आते हो, लेकिन बीच डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा के हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाए तो अलग काल के शांत मान नाम के लिए
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: राज राज।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जय छोटा।

छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको लेना दे सकते। हमारा बाप आया, आपको मालूम पड़ा हमारा बाप है, जो सब किसी को भी बेच के

चित नहीं रह जाए। क्योंकि समय अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। अचानक कुछ भी खिटखिट शुरू हो सकती है। अपना फर्ज आसपास का एरिया चेक करो, कोई रही हुई तो नहीं है। अगर दूसरे की एरिया है तो उसे राय करो। वैसे बिना राय
योगा।

0: अपनी एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shut up.

duvara. Desisto.

रही चीजों को परिवर्तन

Busters.

अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा को शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। मनसा सेवा जैसे वाचा सेवा का विस्तार किए, वैसे मनसा

open. Jo aapki topic rakhi hai, happy or hope. Ye fellow. Himmat

força. Esses patos são mordidos.

Ощакта. Сакаште неки. Сяде. И сива ме манако. Sightseeing.

0: साइट सीन देखने के लिए साकी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस। साइट सीन मनोरंजन हो जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते अलबेला पन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है सफल करो, सफल बनो, जो भी खजाने सफल

0: सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असल
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा सभी

0: बनने वाला भी नहीं होते तो क्या बन जाता है।
1: बनने वाले बने तो बनाने वाले की
2: बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Peace.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Bye.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों समाया हुआ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से अटेंशन से। और पाप के लिए है क्या? परम आत्मा के लिए है, आत्मा है, नंबर वन आत्मा है तो है। स्वयं बच्चों के याद के पाप रह नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम

in it.

shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ज्ञान सुनना सुनाना, तो सहज लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वरूप मिलाया भी बोल।

0: चारी सब्जेक्ट में अनुभव स्वरों।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है। Yes.

साथ में। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि बड़ी इतना बड़ी परिवार विश्व में किसका है। जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं। वाह, फॉलोअर या परिवार, परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आप जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न संस्कार। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में एक परिवार एक बाप एक राज तो एक हो के चलना। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना स्थिति में स्थित हो चलना है। क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है। लेकिन यहाँ धर्म और राज दोनों की स्थापना सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता है उनका सिर्फ धर्म है, राज नहीं है। या तो आप सबको राज भी करना है, जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कर्नाटक में बाप दादा ने देखा है कि फारस क्वालिटी बन सकते हैं। जितने फारस की बात नहीं करते हैं, लेकिन कर्नाटक के धरनी से फारस बहुत निकल सकते। ताली नहीं सिर्फ बजाना, निकाल के दिखाना है। नजर पड़ती है लेकिन टीचर्स की नजर नहीं पड़ी। सुना पांडव, सुना पांडव, बहुत निकल सकते। बाप दादा को कोने कोने में याद आते हैं। यज्ञ कर्नाटक के वारिस चला सकते हैं। क्या समझा? अभी निकालना और बहुत सहज निकल सकते। सिर्फ अटेंशन नहीं दिए, जनरल सेवा में लग गए, पर्सनल सेवा।

सेवा का चमत्कार वारस निकाल सुंदर पालना चाहिए। उठाओ पान का बीरा उठाओ, दादी को कहो हम सहयोगी बनेंगे, बनाएंगे और बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। आज देखेंगे, 6 मास में देखेंगे। क्या कहा? कि पहले आप निकालो, दादियां आएंगी, कुछ वारस तैयार करो, फिर दादियों को बुलाओ, आएंगी। जो प्लान बनाने चाहो वो बनाओ, लेकिन वारस निकल सको करके जाना। टीचर्स वारिस क्वालिटी कैसे निकाली जाती?

0: क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं। देखो कहाँ से बाइक ज्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से बारिश ज्यादा निकल सकते हैं। होना ही है, जब समय समाप्त होगा तो सब निकलेंगे ना, निकलेंगे जरूर। सुना सिर्फ कांध नहीं हिलाना करके देखा ना, कर्नाटक वाले कांध बहुत अच्छा हिलाते, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है ना, दूसरे को नहीं देखना। ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? अगर वो पहाड़ है, मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। ये बदले तो हम बदलेंगे, ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूंगा, न पहाड़ हटेगा पर पहुंच सके। इसलिए अगर शुभ भावना है आत्मा के प्रति, तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी है, लेकिन हमको नंबर वन बनना। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा। यही सोचती है तो सच्ची बात है ना, ये तो होता ही है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे? अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वरश।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए, बाप दादा खुश है। लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और जाए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फ्रिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना और अचानक होना, इसका अभ्यास अगर सेवा भी की लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा कि अचानक होना है और ऐसी सरकमटेंस में होना है, इसीलिए बाप को लेना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार बिना बिना इशारे दे रहे, सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स, क्योंकि चार सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी लेकिन और तीन सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और तीन में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा। चार ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए, ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आश।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लता बचे, इसलिए अपने सिक्की लते सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा लगता है, वो मांग रहे हैं, लेकिन बातें छोटी छोटी बातें रुकावट डालती अभी इसको मिटाने की कोशिश करूं। सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाती। अभी तक के रिजल्ट में जो सोचते इतना अच्छा उठाते हैं जो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अच्छा है तो बाप दादा साथ है तो हाथ भी साथ देते हैं। लेकिन बाप

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

स्टॉप हो जाए।

fechei.

Summit of

0: स्वरूप मेला।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज की बात व्यर्थ संकल्प के समापति की भूल नहीं जाना। बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीवर पुरुषार्थी बच्चे और एक दो को भी अमकुत साधे आगे बढ़ाने वाले। अगर कोई गलत भी करता है तो उसके प्रति वो गलत करता है और आप उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो, ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई सेंटर पर कभी भी कोई एक दो के प्रति कोई भी और भावना नहीं, शुभ भावना शुभ कामना, ठीक है ना? बहुत अच्छा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: लोग सेवा में नवीनता क्या लाएं? जो अभी तक सेवाएं चली हैं, उसके अलावा आप नयापन क्या लाएं?
2: नयापन ये लाओ जो आने वाली है और लोगों नजदीक कम से कम स्टूडेंट तो बने, कभी कभी आने वाले संपर्क खुद बनावे, दिलो वे ऐसी रिजल्ट आने वालों की होनी चाहिए। अभी आए अच्छा है,
1: संदेश तो बहुत मिल गया सबको, बहुत जा भी रहा है और मिल भी गया।
2: अभी नजदीक आना, कम से कम स्टूडेंट नहीं बने लेकिन आने वाले मिलने वाले सुनने वाले तो बने, कम से कम बोलने तो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है।

करने के पहले सोचो, क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाप का है? अगर है तो प्रैक्टिकल करो, घर के पीछे नहीं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

दूसरे अलबेले पद के भी यही शब्द। कोई का

Ospet Jeremy.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जाओ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, कि कर रहे हैं, करना तो पड़ेंगे ही। आप लोग आपस में उसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेंगे ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्म, इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते, नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। खुशी से समर्पित होती है, हद कम है और मेरे में, वो जन्म जन्म फर्से के अधिकारी बन जाते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे

0: così mi naistere. Sì, col che dia. Mero a mot valunga sikra.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: फाचा की सेवा भले करो, तुम दाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमेशा
2: अच्छा।

0: और सिखा अधिकारी नहीं बन सकते तो अनुभव संबंध में लाने वाले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा? समझा? समझा?
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

us. I'm sorry.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sorry.

मस्त करने की कोशिश करती है। और लास्ट में सब संस्कार समाप्त।

是火箭。

Macam.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

So

Thank you.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: क्यों को होना

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: अचानक तब जब बच्चे भी बाप समान बन जाए। आपकी सूरत मूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष कर हो जाना तो है, हो नहीं है अभी सिर्फ निमित्त बन।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के गर्भों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं, जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रही, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे हैं किस में मेरे कोई नुकसान है, समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए

जिसमें सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। क्लीन और क्लियर रहता है, इसलिए बाप दादा को डबल फारे नर्स की सच्चाई।

सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच्चाई होगी ना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे अभी सब खुशी में भरपूर दिखाई दे रही है, ऐसे ही सदा रहती है। कोई भी बात समझते हैं सदा रहेगा, पीती सब

head.

خوش مزاج چهره ایسے ہی

मुश्किल रहता है, चेहरा अच्छा लगेगा। तो आज से सभी बच्चे सिर्फ सो नहीं, सभी बच्चे अपने दिल में प्रॉमिस करो, सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश

Yoga Kushi.

अच्छा।

Whistling or whooshy parting. Bagair ki yahan bhi koi baat ho gayi to khushi gayab ho jayegi. खुशी को जाने नहीं देना, है ताकत है, हाथ उठाओ. अच्छा, देखना आपके जोन वाले, आपके सेंटर वाले.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से भगाओ, आने देते हैं।

सोचते कि अभी तो टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी तो समय पड़ा, पुरुषार्थ कर रही है, पहुंच जाएंगे तो माया भी समझती है। एक तो आने दिया, दूसरा ये तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खतरी कर रहे हैं। तो जो माया को पहचान लेते हैं, पहचानने में भी गलती कर लेते, माया की मत है। वाह, पाप की मत है, न पहचान।

7.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

भगवान को। सदा सफलता स्वरूप बनाना है, सफलता स्वरूप तो सफलता सदा एक एक बच्चे के साथ है। सिर्फ उसको प्रैक्टिकल पे लाना है। ही सफलता स्वरूप ही सफलता।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत और मंगोत्सव मास्टर दाता हो, जो भी आवे कुछ ले जावे, चाहे सने ले जाए चाहे सहयोग ले जाए चाहे हिम्मत ले जाए चाहे वो मांग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे। वैसे तो सभी का काम ये है, कभी भी किससे मिलते हो, मिलने आता है खाली हाथ नहीं जाए। चलो दृष्टि का सने ले जाए, टाइम नहीं है बात करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, लेकिन जो आया वो गया कैसे।

सभी की भ्रमण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना। नजर से निया